0: उन्हें अक्ल पिलाती तो उसमें कुछ दूध हुए वो माँ का जो है बच जाता है और जो है डब्बे से पिता है एसिशन है तो फिर रोज रखें और बच्चों को दूध भी पिलाती रहे उसमें कुछ नहीं पड़ता। लेकिन अगर वो अपना दूध देती तो कोई दूध दूसरा दूध कम देती है तो पीता नहीं तो ऐसी और ये जाए कि वो रोजा ना खे लेकिन नमाज में कब्र फर्ज है जितनी रोजे उन्हें छोड़े हैं वो रोजा को छोड़े हैं तो जितनी होंगी उतनी से आती उतनी मिसाना भी खिलाना पड़ेगा और पैसे देना जायज बल्कि इत्म है खिलाना इसमें लाजमी है कि और पिछले साल के भी रोज छूट गए उस टाइम मेरी हालत ज्यादा खराब और वोमिटिंग गुजरी मैं क्या करूँ इससे मैं अपने पिछले के रोजे हक अदा करूँ। अगर साल में आभार थी और उसे रख सकती थी तो उस रमजान से लेके इस रमजान तक आपके पास पूरा साल उसमें आप कजा कर लेती अगर पूरे साल में कजा नहीं की बीमारी की वजह से और ये रमजान भी चंद दिन बाद शवाल अभी तो आप नहीं रख सकते तालिबन क्योंकि दूध भी पिछले रमजान आप नहीं रख जैसे कि आप रहे अलगर से रमजान के रोजे वहाँ पर आप फर्ज है और क्योंकि एक रमजान गुजर चुका है और एक उससे ले आपने रजा नहीं तो अगले यानी इस रमजान के जब आप अदा करेंगी एक मिस्किन खाना भी खिलेगा यानी अब सिचुएशन अब पिछले रमजान के रोजे ताकर जब से छूटे महीना है तो महीने के रोजे अगर पूरा महीना नहीं जितनी भी आपने छूटे उनके खिलाफ पर फर्ज अदा करेगी जितने रोजे उतने दिनों आप मिस्को खाना भी खेंगे पिछले रमजान इस रमजान में अगर आप बच्चे को पिलाने की वजह से रोजे रखती तो आप कद करेंगी और मिस्को भी खिलाएंगे खुद दिन गिन लें जितने पिछले साल के आपके हैं और इस रमजान आप देख लें आप बच्चों को खाना ना महीने से भी हो सकते हैं रमजान से पहले भी कर सकते हैं पिछले साल के और साल के भी घर जिन रमजान के बाद कर सकें आप खाना खुद घर पका के खुद घर का के उनको उसी में पहुंचा दें इसमें नहीं है आप लाजमी बाहर पकौड़ा खरीदें नहीं आप मन मुर्गी पकाने कुछ में से खाना रोटी कर सकती हैं आप इस या जितनी भी रोज उतनी और पिछले महीने की जितनी है उतनी सब अपने घर में के भी सकती हैं घर में आप दे सकती हैं जब बाहर से अगर नहीं पका बाहर से लेके आप दे सकती हैं।
1: अल्लाह والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أما بعد هل جاء الإحسان إلى الإحسان يسارعون في الخيرات إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا الخاشعين نبي رحمة صلى الله عليه وآله وسلم فرماتي حاسئ الله عليه أحب المال إلى الله إلى الله عز وجل سرور تدخله على مسلم أو تشكو عنه ربة أو طيع عنه دينا أو طرد عنه جوعا والأمشي أخي المسلم حاجة أحب إليه من أن أعتى مسجدك أن كف غضبه سر الله من كظم أيضا ولو شاء أن يمضي الله الله قلبه رضا يوم القيامة ومشى معه يسلم في حاجته حتى يثبتها له أسأل الله تعالى قومه يوم تزيد القدام وإن سوء ليسأل العمل كما يسد مثل الأسد أجك موزه خوب سورة مهينة جزء خوب سورة أعمال رمضان کی عظیم خوبصورت میں کون سے خوبصورت اعمال ہیں جو کرنے چاہیے بہت سارے اعمال ہم جانتے ہیں اور بہت سارے مسلمان یہ خوبصورت اعمال جو وہ جانتے ہیں رمضان میں اعمال بجالا سب سے اور بہت ہی اچھے اور بعض اعمال جن سے اکثر مسلمان غافل ہیں اس خوبصورت مہینے اور اس مہینے دعوت ہے وہ کون اعمال ہیں خوب اعمال جو جانتے ہیں وہ کون ہم نہیں جانتے ہیں

साथी उन्हीं का सर था और सैयदना बिलाल की तलवार थी। जुर्म ज्यादा अरसा नहीं रह सकता मेरे भाइयों, जुर्म की हद है और जुर्म जब टूटता है तो अपने साथ जालिम के हर जुर्म को लेके जाता है, पीछे कुछ नहीं छोड़ता। यह तो एक शख्स था जिन्होंने हर तकलीफ बर्दाश्त की, अल्लाह उन पर राजी हुआ। इस तकलीफ के बावजूद भी वो अल्लाह ताला पर राजी थे। अल्लाह ताला तेरा शुक्र है, अल्हम्दुलिल्लाह अला कुल्ली हाल। तकलीफ में अल्लाह का शुक्र अदा किया जा रहा है। हमारा क्या हाल है, हम अल्लाह ताला का शुक्र कब अदा करते हैं? जब हमें कोई नफा पहुंचता है तब। शादी हुई तब अल्लाह ताला याद है, शुक्र अदा किया। औलाद आई तब अल्लाह ताला याद आया, तब शुक्र अदा किया। नौकरी मिली तब अल्लाह ताला याद आया, तब अल्लाह का शुक्र किया। अलगर्ज जब भी कोई हमें नफा पहुंचता है, फायदा होता है, तब अल्लाह ताला का शुक्र करते हैं। सैयदना बिलाल को देखें, एक एक तकलीफ में अल्लाह ताला का शुक्र अदा करते रहे। जानते किस चीज का शुक्र? कि जान जाती है चली जाए, ईमान तो बाकी है ना। उनकी सोच उनकी फिक्र सिर्फ ईमान थी, क्योंकि यही एक ईमान ही है जो नजात का जरिया है और कामयाबी और फलाह की बुनियाद है। अगर ये कम हो जाए या जाया हो जाए, नऊज़ु बिल्लाह, फिर मेरे भाइयों नाकामी ही नाकामी है। जिस्म पे तकलीफ क्या एक नमूना था। ये दूसरा नमूना देखते हैं जो इससे ज्यादा बढ़कर है, पूरा घराना। सैयदना अम्मार बिन यासिर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु मशहूर सहाबी हैं। उनका वालिद सैयदना यासिर, उनकी वालिदा सैयदा सुमैया और उनके बेटे अम्मार रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, पूरा घराना मुसलमान हुआ। अभी तो वो परेशान थे कि एक एक लोग मुसलमान हो रहा है, मुशरिक परेशान थे कि एक एक शख्स पर हम काबू नहीं पा सके तो पूरा घराना मुसलमान हो गया। तो बड़ी मुसीबत थी उनके लिए, क्या किया जाए। कौम का सरदार, सबसे बड़ा जालिम, सबसे बड़ा अजाब देने वाला और अजाब देने के अजीब और गरीब तरीके, अजाब देने में और जुल्म में स्पेशलिस्ट, स्पेशलाइजेशन की हुई है। सुभान अल्लाह। अबू जहल को बुलाते थे और अबू जहल घर के अंदर नहीं, चौराहे पे पूरे घराने को अजाब देता था ताकि पूरे मक्का वाले देखें और ऐसा जुर्म कोई और ना कर सके। जुर्म क्या था? ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। मारते रहते सुबह से शाम तक, गर्म आग की तरह पत्थरों पर बांध देते थे सारा दिन, कोड़े मार मार के, कोड़े मार मार थक जाता था। जिस्म पर कोई एक जगह नहीं थी जहां पर कोई जख्म का निशान बाकी ना रहे। नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी आंखों से देखते थे। प्यारे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंखों में आंसू आ जाते थे और फरमाते थे, सब्रन आले यासिर फइन मौईदकुमुल जन्ना। ए आले यासिर, सब्र करो, अल्लाह ताला का वादा है जन्नत का, तुम्हारी ये जगह थोड़ी है, ये तो वक्ती तौर पर एक आरजी जगह है।